कि फ़लस्तीनी इंतखाबात मुलतवी होने में इसराइल का हाथ है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के इकदाम तशद्दुद और पाबंदियों ने इंतखाबात के इनाकात के लिए ज़रूरी हालात को नुकसान पहुंचाया है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने एक सदारती फरमान जारी किया है जिसके तहत सदारती और कानून साज इंतखाबात 11 सितम्बर 2027 को मुनक्कद किए जाएंगे। सदारती हुक्म की रूह से इंतखाबात की नई तारीख ने इस साबका तारीख की जगह ले ली है जिसके मुताबिक इंतखाबात 9 नवम्बर 2026 में मुनक्कद होना थे। इसराइल ने गाज़ा शहर पर ड्रोन हमला करके 5 फ़लस्तीनियों को कत्ल और मुतअद्दिद को ज़ख्मी कर दिया है। इन हमलों के बाद रात देर के किए गए फ़जाई हमलों में गाज़ा के शुमाली और वस्ती इलाकों में 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और आसपास की दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तिब्बी सराय ने दिन के इब्तदाई औकात में गाज़ा शहर पर किए गए ड्रोन हमलों में 5 फ़लस्तीनियों की हलाकत की तस्दीक की है। चंद घंटे बाद इसराइली जंगी तैयारों ने गाज़ा शहर के शुजाया, अलीफा और रिमाल मोहल्लों में वाक़ 3 मकानात और देरुल बालख में अल बेसी खानदान के एक घर पर बमबारी करके इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इलाके की रहायशियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक इनके मोबाइल फ़ोनों पर अचानक मौसूल होने वाली इनखलाकी वार्निंगों के बायस इलाके में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। बमबारी से कबल दर्जनों खानदानों को अपने घर छोड़कर सड़कों पर पनाह लेने के लिए भागना पड़ा। हमलों में 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और आसपास की इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मकानात पर बमबारी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मोहलक हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इसराइल इलाके में जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं। गजा वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान अब तक 1,470 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल और 5,180 से ज्यादा को जख्मी कर चुका है। फलस्तीनी हुकाम के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इसराइल अक्टूबर 2023 से गजा पर मुसलत करदा नस्लकुशी जंग के दौरान 74,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल और 1,75,000 से ज्यादा को जख्मी कर चुका है। इसके अलावा इलाके के तकरीबन 90% बुनियादी ढांचे को भी तबाह कर दिया गया है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: गैर कानूनी इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनी काश्तकारों की चुनी हुई फसल चोरी कर ली। फलस्तीन की सरकारी खबर रसां एजेंसी वफा के मुताबिक फलस्तीनी जमीनों पर काबिज इसराइली आबादकारों के एक ग्रोह ने इसराइली फौज की हिफाजत में मुगैर गांव के मशरक में वाक मैदानी इलाके में फलस्तीनियों की एराजी में दाखिल होकर जैतून की चुनाई के बाद जमा की गई फसल चोरी कर ली। अक्टूबर के आगाज में जैतून के फसल की कटाई शुरू होने के बाद से फलस्तीनी किसानों के खिलाफ इसराइली फौज और फलस्तीनी जमीनों पर काबज इसराइली आबादकारों के हमलों में इजाफा हो गया है। इन हमलों के दौरान फलस्तीनी किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इन्हें इनके जैतून के बागात में दाखिल होने से रोका जाता है, इनकी फसल चोरी की जाती है और जैतून के दरख्तों को उखाड़ दिया जाता है या आग लगा दी जाती है। सऊदी अरब के दारुलकूमत रियाज के किंग खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर हूसियों के हमलों में 12 अफराद हलाक और 309 जख्मी हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक कल बरोस हफ्ता यमन के हूसियों ने दारुलकूमत रियाज में वाक़ किंग खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर हमला किया जिसमें कम अज कम 12 अफराद हलाक और 309 जख्मी हो गए हैं। सऊदी अरब महकमा शहरी हवाबाजी के हुकाम ने हमले में 4 सऊदी, 2 बंग्लादेशी और 1 अमरीकी, मिस्री, उर्दनी, शामी, फलस्तीनी और सूडानी शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। तिब्बी इमदादी टीमों ने 309 जख्मियों को दारुल हुकूमत के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया है और बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हुकाम के मुताबिक हमले में हवाई अड्डे के टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा है और तकनीकी टीमें नुकसान की शिद्दत का तायुन करने के लिए मुआयना जारी रखे हुए हैं। परवाजों में भी बड़े पैमाने पर खलल हुआ है। हवाई अड्डे की इंतजामिया ने हमले से फौरन बाद नुकसान का जायजा लेने और तनसीबात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम परवाजें आरसी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं। इस फैसले के बायस इलाकाई फजाई आमदोरफ्त में शदीद खलल पैदा हुआ है। मुसाफरों को हवाई अड्डे जाने से पहले अपनी एयरलाइनों से राबता करने का मशवरा दिया गया है। कुवैत एयरवेज ने हवाई अड्डे की हंगामी बंदिश को वजह करार देते हुए हफ्ते के रोज रियाज आने और रियाज से रवाना होने वाली अपनी तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है कि जब पहले ही सऊदी अरब के हवाई अड्डों और अहम बुनियादी ढांचे की तनसीबात पर मुसलसल हूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बायस खत्ते में कशीदगी उरूज पर है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के किंग खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर मुहलिक हमले की मजम्मत की

और लीजिए सामिन, अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं एंजेलिक क्लेयर यूसुंदन और गाया है सरताब एरनर ने।

और तकद्दस की वजह से ना सिर्फ जायरीन को अपनी तरफ रागिब करता रहा बल्कि उसने मशरिक़ और मगरिब के दरमियान इंसानी आमदोरफ्त का एक कसीरुल जहती सिलसिला भी पैदा किया। मुसलमान और ईसाई जायरीन, ताजिर, अतबा, स्कॉलर्स और हुक्मरान मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए फिलिस्तीन पहुँचे। ये रास्ते कभी बराह रास्त यरूशलम, कभी गज़ा या अलखलील और कभी दमिश्क और काहिरा को आपस में जोड़ने वाली मरकज़ी शरियानों की तरफ खुलते थे। लिहाजा फिलिस्तीन के रास्ते सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरों तक महदूद नहीं थे। किसी ख़बर का दूसरे जुग्राफिया तक पहुँचना, पैदावारी तकनीक का दूसरी मार्केट में मुंतकिल होना या किसी तिब्बी फार्मूले का दूसरे तबीब तक पहुँचना इसी मुतहरक नेटवर्क की बदौलत मुमकिन हुआ। फिलिस्तीन के रास्ते जुग्राफिया के साथ साथ जहन और याददाश्त के रास्ते भी बन गए। इस नेटवर्क से उभरने वाली सबसे नुमाया शख्सियत 10वीं सदी में यरूशलम में पैदा होने वाले शमसुद्दीन अल मुकद्दसी की है। उनका नाम भी उनकी जाय पैदाइश की मुहर के साथ जुड़ा हुआ है, अल मुकद्दसी यानी यरूशलम का रहने वाला। 945 से 946 ईस्वी में यरूशलम में पैदा होने वाले अल मुकद्दसी ने जुग्राफिया को सिर्फ सैर व सेहत के मकामात के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से का सफ़र किया और अपने मुशाहिदात को तज्जियाती अंदाज में कलम बंद किया। उनका वो नुक्ता नज़र जो उन्हें अपने दौर से आगे ले गया ये था कि उन्होंने शहरों को सिर्फ उनके नामों से नहीं बल्कि उनके बाजारों, इक्तसादी मसनूआत, पैमाइश के निज़ाम, करंसियों, मकामी रिवायात और समाजी ताने बाने के साथ बयान किया। उनका शाहकार अहसनुल तकासीम फी मारिफतुल अकालीम महज एक खुश्क जुग्राफियाई किताब होने के बजाय 10वीं सदी की दुनिया की तमाम तर तफसीलात को पेश करने वाली इंसानी जुग्राफिया की एक तारीखी दस्तावेज़ है। यहाँ हमारे सामने आने वाली तारीखी हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। जहाँ यरूशलम सदियों से मुख्तलिफ खितों के लोगों के लिए एक मुकद्दस मरकज़ रहा है, वहीं यरूशलम से निकलने वाला एक जहन दुनिया को देख रहा था, उसका मुतालिया कर रहा था और उसे रिकॉर्ड में ला रहा था। फिलिस्तीन के मालूमाती नेटवर्क को सिर्फ सयाहों और माहरीन जुग्राफिया ने ही नहीं बुना, ताजिर भी इस बहाव के सबसे मौसर अलम बरदारों में शामिल थे। ख़ास तौर पर नाबलूस अपने जुग्राफियाई मकाम की वजह से मुख्तलिफ तिजारती रास्तों के मिलाप का एक अहम मरकज़ था। उस्मानी दौर के रिकॉर्ड जाहिर करते हैं कि नाबलूस के ताजरों ने याफा, हाइफा, अका और गज़ा जैसे साहिली शहरों के साथ साथ यरूशलम, अलखलील, काहिरा और दमिश्क के साथ मजबूत तिजारती रवाबित उस्तवार कर रखे थे। यहाँ असल मामला माल की मादी नकलो हरकत का नहीं है। जब एक ताजिर कपड़ा लेकर जाता था तो वह अपने साथ पैदावारी सकाफत भी ले जाता था। जब जैतून के तेल की कोई मसनूआत दूसरे शहर पहुँचती थी तो उस सरजमीन की इक्तसादी और तकनीकी महारत भी उस मार्केट में नज़र आती थी। नाबलूस का साबुन उसकी सबसे ठोस मिसालों में से एक है। जैतून के तेल, पानी और राख के पानी के इम्तिजाज से बनने वाला ये रिवायती साबुन नस्लों से ख़ानदानी कारखानों में एक हाथ से दूसरे हाथ मुंतकिल हो रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को की जानिब से 2024 में इस रवायत को इंसानों के गैर मादी सकाफती वरसे की नुमाइंदा फहरिस्त में शामिल करना इस बात का आलमी सबूत है कि ये हुनर और इल्म तहरीरी मतन से नहीं बल्कि असातज़ा की अमली महारत की मुंतकिली से जिंदा रहा। फिलिस्तीन की इंसानी नकलो हरकत ने तिब और फार्मेसी के शोबे में भी गहरे नकूश छोड़े। 10वीं सदी में यरूशलम में उभरने वाले तबीब मोहम्मद अल तमीमी इस इल्मी जखीरे के मजबूत तरीन नुमाइंदों में से एक हैं। यरूशलम में तिब की तालीम हासिल करने और मकामी जड़ी बूटियों से अद्वियात तैयार करने में महारत हासिल करने के बाद अल तमीमी अपनी तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए मिस्र चले गए। उनकी ज़िंदगी और काम से मुतालिक सवानही ज़राए बताते हैं कि उन्होंने यरूशलम में तजुर्बाती अद्वियात के मुरक्कबात और जहर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले तरियाक नामी पेचीदा तरियाकों पर काम किया और वो इस इल्म को मिस्र के तिब्बी हलकों में लेकर गए।
طبی لٹریچر میں التمیمی کی خدمات کو بعد کی صدیوں میں اسلامی دنیا کے کئی اطباء نے بطور حوالہ استعمال کیا۔ یروشلم میں تیار ہونے والا ایک طریقہ علاج مصر تک پہنچ سکتا تھا، کسی دوسرے طبی متن میں شامل ہو سکتا تھا اور بر اعظموں کے درمیان گردش کر سکتا تھا۔ سامعین، جب ان تمام تاریخی حقائق کو ایک ساتھ رکھا جائے تو فلسطین کی تعریف کے لیے استعمال ہونے والی یہ اصطلاح کہ یہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک گزرگاہ ہے ناکافی لگتی ہے، کیونکہ گزرنے کا عمل صرف ایک غیر فعال حرکت کو بیان کرتا ہے، جبکہ فلسطین ایک ایسا متحرک مرکز تھا جہاں لوگ، مصنوعات، تکنیک اور نظریات آپس میں ملتے گھلتے ملتے اور دوبارہ تخلیق پاتے تھے۔ راستوں پر شہر تھے، شہروں کے مرکز میں بازار تھے اور بازاروں کے اندر کاریگر، تاجر، طلبہ اور طبیب موجود تھے، اور اس نیٹ ورک کے ذریعے جو چیز گردش کر رہی تھی وہ صرف اقتصادی اقدار نہیں تھی بلکہ وہ خبریں، تجربات، تکنیکی مہارت اور سماجی یادداشت تھی۔ اسی لیے فلسطین کی تاریخ کو صرف تنازعات، سرحدوں اور سیاسی بحرانوں کے آئینے میں پڑھنا ایک نامکمل نقطۂ نظر ہے۔ فلسطین کی اصل تاریخ ان لوگوں کی تاریخ ہے جو تخلیق کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، منتقل کرتے ہیں اور اسے آگے پہنچاتے ہیں۔ تاہم علم کا یہ سفر صرف کتب خانوں میں موجود مخطوطات یا سیاحوں کے نوٹوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ کچھ معلومات کسی طالب علم کی ڈائری میں منتقل ہوئیں، کچھ مشہور تحریروں میں محفوظ ہوئیں اور کچھ براہ راست کاریگر کے ہاتھوں اس کے ہنر میں زندہ رہیں۔ کسی مواد کی شکل، بھٹی کا درجہ حرارت، اس کا قوام یا وقت کا تعین، یہ وہ ٹھوس معلومات تھیں جنہیں فارمولوں میں نہیں ڈھالا گیا بلکہ یہ استاد سے شاگرد تک دیکھنے اور تجربہ کرنے سے منتقل ہوئیں۔ کیونکہ کبھی کبھی کسی شہر اور قوم کی یادداشت کتابوں کے شیلفوں میں نہیں بلکہ دہکتی آگ کے سامنے کام کرنے والے کسی کاریگر کے ہاتھوں میں چھپی ہوتی ہیں، تو راستوں کے ساتھ سفر کرنے والا یہ علم الخلیل میں دہکتی آگ کے سامنے کس طرح ایک ہنر اور فن میں تبدیل ہوا۔ اگلے حصے میں ہم الخلیل کے شیشہ گروں کا آگ کے ساتھ صدیوں پرانے تعلق اور نسل در نسل منتقل ہونے والے پیداواری رازوں کا سراغ لگائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

सामिन, इथोपिया में सितंबर 2026 में होने वाली पेशरफ जाहिर करती है कि 2022 के प्रिटोरिया माहदे के बाद कायम होने वाला नाजुक सिक्योरिटी निज़ाम एक संगीन इम्तिहान से गुजर रहा है। टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, अम्हारा फानो नेशनल मूवमेंट और वुमो लिबरेशन आर्मी और मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों पर मुश्तमिल इथोपिया के अवाम का बकाए इत्तेहाद के 20 सितंबर को होने वाले ऐलान के फौरन बाद टिग्रे फोर्सेस की जानब से मेकेले, अक्सूम और शीरे के हवाई अड्डों का कंट्रोल संभाल लेने इस बहरान को महज एक सियासी अपोजिशन की कोशिश से आगे बढ़ा दिया है। अब चूंकि झड़पें अम्हारा और अफारा तक फैल चुकी हैं, इसलिए इस नए इत्तेहाद की ज़मीनी सलाहियत, वफाकी हुकूमत का रद्दअमल और प्रिटोरिया निज़ाम का मुस्तकबिल एक नई मसावात की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगरचे अपने बानी बयान में इत्तेहाद ने अपना बुनियादी मकसद अभी अहमद की हुकूमत को इक़्तदार से हटाना बताया है, लेकिन इसी इत्तेहाद के अंदर TPLF और फानो जैसे धड़ों का एक साथ होना, जो 2020 से 2022 की जंग में एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, इस इत्तेहाद की अहमियत और इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी दोनों को वाज़ेह करता है। लिहाजा मौजूदा बहरान को महज TPLF और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक नई जंग के तौर पर देखने के बजाय 2018